0: एक दे भाग कदी दूजा नहीं हो सकता। चेते रखी अपने अपने भाग सारे खांदे ने, तैनू समझ नहीं कदी वेखी के एक दा भाग एक दे मस्तक दे भाग दूजा खा ले। साहब ने बाणी विच कहे, कहिंदे ने तां रब दी किरपा है, एक मां दी कुख विचों दो बच्चियां दा जन्म है, एक विचारा दिहाड़ियां करदा पिया ते एक जिहड़ा राज पदवी ते बैठा होए। भाग आपो अपने ने। सतगुरु ने बाणी विच कहा, निर्धन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला न मेटी जाई। साहब ने बाणी विच कहा, आपण लिया जे मिले सब को भागत होए, करमा ऊपर निबड़ा जे लोचे सब कोई। बापू अपने अपने भाग खांदा हर कोई, कौन किसे नू भाग देण वाला है।
1: निज निज भाग अदक हर घाट, भोगत जग में रंग सुराट।
0: ये गल वखरी के भाग आपो अपने ने। कोई 36 प्रकार दे भोजन रात नू खा के सौंदा है, ते कोई सुका प्रसादा खा के सौ जांदा है। अपने अपने भाग ने। कोई अपने तन ते खद्दर दे बस्त्र पा के, सादे बस्त्र पा के जिन दिन कर लैंदा है, ते कोई एक दिन दे अंदर कई कई तरह दे बस्त्र बदलदा है। आपो अपने भाग ने। मेरे साहब ने सारे गल्लां बाणी विच कहियां ने। हजूर बचन करदे ने ना, सतगुरु दे बचन आपां पढ़ने आ, कबू खाट सफेदी सवावै, कबू भूम प्यार ना पावै, ये तेरी रजा है मेरे मालक। किसे नू तू बस्त्र कीमती, किसे नू बिल्कुल मैले बस्त्र देना। हे पिता भाग आपो अपने ने, अपने अपने भागां दा खांदे हां।
1: सुन पित क्रोध करियो और भारी, सबके सुनते गिरा उचारी।
0: किन ने इनी गल सुन दी देर सी, मूर्ख बापू नू समझ नहीं पई। उस धी वल अखां लाल करके ने देखिया, क्रोध नाल एदा चेहरा भखन लगा, ते इको दम थिड़कदी जबान विच ए कहन लगा है।
1: अमुक रंक हम जात मुझारी, तिसके पुत्र कष्ट तन भारी।
0: ते कहन लगा, तेनू कौन रिजक देंदा है। कहन लगी, एक परमेश्वर एक वाहगुरु। अपने भाग खानी आ, फिर गुस्से विच आया कहिंदा, चंगा जे अपने भाग तू खानी है, ए नहीं समझदी के मैं तेनू देना। ते साडी जात दे अंदर एक मनुख है जिदे पुत्र नू कोड़ दा रोग लगा हुआ है, साडी बिरादरी विच रहिंदा है, तेनू समझ पै जाए कि देण वाला कौन है। प्यारियो सिर्फ इको ही आ गल जे जेड़ी बंदे नू रब तो दूर लै जांदी। साहब ने मनमुख की परिभाषा ही दित्ती है, देंदे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए। साहब ने बाणी विच कहा, दात प्यारी विसरिया दात आरा, दात मिल गई दतार भुल गया। मैं एक खिन विचों निकलन लगा, प्रकरण मिलदा रहीम ने दो दोहरे कहे। एक नवाब सी, उन्हें थाली भर लेनी रुपया नाल, सवेरे सोने दियां मोहरां रखनियां, सारे बंदियां नू देखी जाना, जदों भिखारी आउणे ना ते अपनियां अखां नीवियां करके ते बुक भर के उहदी झोली विच पैसे पा देने, लोकां लंघी जाना। इन्हें कदी चेहरा तक के भिखारी वल देखिया नहीं, नीवी पाई रखनी। ते एक दिन कोई सज्जन लंघिया, ते उन्हें एक गल पुछी, कहिंदा नवाब एक गल तेरी तो मैं खुश हाँ, रब दा भय मनना, लोकां नू दान पुन करना, पर जदों तू किसे दी झोली विच रुपये पाने ते अपनियां अखां क्यों नीवियां कर लैना। उन्हें बड़ी सोहनी गल कही रकीम ने, कहन लगे, सीखे कहा नवाब जू, देनी ऐसी देन। हे नवाब कित्थों मैं सीखिया एहो जी गल, तू ज्यों ज्यों कर ऊंचा बड़ा। इहदा मतलब ज्यों ज्यों तू हाथ भर के किसे नू देन लगना, त्यों त्यों नीचे नैन, त्यों त्यों तेरियां अखां नीवियां क्यों हो जांदियां ने। किसे दी झोली विच पाण लगियां तू अखां नीवियां क्यों कर लैना। अगो नवाब ने बड़े कमाल दी गल कही, कहन लगे, देन हार कोई होर है, जो भोजत बेजत है दिन रैन, क्यों मैं अखां नीवियां करना वा। कहिंदा देन हार कोई और है, जो बेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें जाते नीचे नैन। मैं इस करके अखां नीवियां करना दुनिया दे लोको, हाथ मेरा जे देन वाला ते कोई होर है। मता सोचियो मैं दाता वा। उस कमले नू समझ नहीं पई, गुस्से विच आ गया, कहिंदा चंगा फिर साडी बरादरी विच इक कोड़ी है, मैं देखना तेरे भाग किन्ने कु बलवान हन।
1: हाथ पाव अंगरी चर गई, असको मैं जब तोहे दे दई।
0: कहन लगा चंगा फिर तेनू रिजक रब देंदा है ना। कह लगी बिल्कुल। कहिंदा मैं तेनू उस कोड़ी दे लड़ लांगा जिदे हाथ ते पैर चढ़ गए, देखांगा तेरे भाग किन्ने कु कम करदे हन।
1: अपन भाग

0: नरक समान कष्ट को भरी है।
1: लगे अपने भाग तू भोगी, तू कहनी है देन वाला रबे, फिर मैं देखांगा तेरे भाग, ते नरक दे समान तू अपनी जिंदगी बतीत करेंगी।
0: सुन कन्या ने पित की बानी, सोई सी सरी मन मानी।
1: बच्ची ने सुन दिया सार कह दिता बापू, जे मेरे भागा विच ओ ही है ना, मैं ओदे लड़ लगना, ते तू जिन्ना मर्जी जतल कर ले, मैं जाना ओदी घर, मेनू परवाह नहीं, मेनू उस दाते दे बचना ते भरोसा है। गुरमुख कह के गए ने कि ओ पत्थरां विच, ओ रुखां विच, ओ पहाड़ां विच, ओ पानी विच, ओ दरियावां विच, ओ चारे तरह दियां खाणियां नूं देंदा है, ते जे मैनूं लूले दे लड़ लाएगा, पिंगले दे लड़ लाएगा, सच जानी मेरा गुरु नानक ओदी भी चोली विच खैर पाएगा। मैनूं परवाह नहीं, भाग मैं अपने खाने ने, देन वाला ओ परमेश्वर है।
0: इसकी मां सबर जत रही तो पिता ने रिस कर कही।
1: कहने मां रोकती रही है, आखिर मां दा हिरदा है, पता नहीं बंदा किन्ना कु कठोर हो जांदा है। वाह हंकार, बस तेरे जदो तू किसे अंदर कर कर जाने, किसे अंदर बह जाने, हंकारी बंदा ता इत्थे भी नहीं जानदा मैं अपनी धी दे टुकड़े नु किदे लड़ लाना पिया, अपने दिल दे टुकड़े नु धी नु किदे लड़ लाना। ये हंकार ही है ना कि मैं सब कुछ हां। कि मैंने उस बच्ची ने कहा मां रोक ना, याद रखी जे मेरे सिर दा साईं वाहिगुरु है ना, जे गुरु नानक दे घर दी कृपा है, ते इस पिंगले नाल भी लग के मेनू गुरु नानक कृपा जरूर करेगा। मैं ता ओदी रजा दा सबक पढ़िया है, मैं ओदे भाणे विच रही हां, ते मां जेड़ी भाणे विच ते भला करके जान लै, ओदे मुंह विचों कदी तर्क नहीं हुंदा। ए ता मालक जिथे रखे मैं ओथे प्रवान करांगी। कहिंदे इस बच्ची ने उस आदमी नूं प्रवान करने अगले बुधवार विचारांगे। आखिर भाणी नूं मनदी उस धरती ते पहुंचदी है जिस धरती ते कां वी हंस हो जांदे ने। अगला ही हफ्ता मेरा इत्थे दे इह प्रसंग अगले बुधवार पूरा कर देंगे। इन्हियां कु बेनतियां प्रवान करनियां प्यारियो, आप आउंदे हो शाम नूं वध चढ़ के आया करो, सतगुरु दे घर दी हाजरी भरो जी। वाहिगुरु।

नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए, तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधक मेरा सखा सखा, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो हो आपे, हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछत।

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

0: बरा से हर गोविंद चंद को बोलन हर बिहारे सुन चंदू चिंतायत अनक पाओ विचार।
1: वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, हफ्तावारी जो रात्रि दे विशेष दीवान सजदे ने, इस दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। आप जी ने अमृत बचना दा कीर्तन सत्कार योग भाई साहब जी खोणा पासों सरवण कीता है। दो शब्द उन्होंने कीर्तन विच असानू सरवण कराए ने। पहला शब्द सी तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवान। सहिब धन गुरु रामदास कृपालू जी का उच्चारण की

इस प्रकार गुरु रामदास साहब गुरका गद्दी से विराजमान हुए। 1627 बिक्रमी के विच श्री अमृतसर साहब जी ने चक दे टाइम बसाया ते कायम जिथे सब संगी हंस होए, जिस वार साहब ने कहा कि अमृतसर से वो सतवादी जित नाते कौआ है वो है वो कहे हंस होए विसाखी के जोड़ मेले नु साहब संगे जी, जिसको पिंगला जो पति आए राजे का लड़की का राज कौर का पति सी वो भी पिंगला ते कोड़े का मिट गया राजी हो गया सी। इस प्रकार साहब संगे जी गुरु महाराज साहब सत्ते पातशाह ने अमृतसर साहब 52 गोत बसाए ते गुरपुरी एक केंद्र बनाया सिख पंथ के अंदर संसार के भाई उपदेश देने वास्ते परम पवित्र ते तीर्थों का तीर्थ राज श्री अमृतसर साहब सत्ते पातशाह रचना किया।

नीच मूर्ख रे मान करो तुझे उपरे मेरे प्रीतम प्यारी हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे

कहने लग गए, मैं हैरान है जिन्हों को ना खाने ली भोजन है ना रहने ली कोई घर है, हथियार भी लुट लट के बेचारे पैदा करते ने, इन्हों को हथियार को फैक्ट्रिया ने बिचो जाके हथियार रहने का भी वक्त नहीं, ना कोई पैसा कोल, फिर भी रब जाने केड़ी गलों चढ़ती कला च रही सन। गुरु की बाणी पढ़नी, डिनौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक देकर हाथ। हर वक्त तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी, अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदगी। तेरे भरोसे रब दे चरणा में जुड़े रहना। हुण देखो एम शाबदादी जरा लुट लुट के सारिया नू सिद्धे कर रहा हूं दा, शाह निवाज वर्गे भज गए। ओ जदों 18 फरवरी नू लाहौर तो चलिया ते आखिरकार ए 21-22 तरीक नू इन्हें विचो आके 21-22 तरीक नू विचो सरहंद नू भी हुंदा आया। 21-22 तरीक नू ए करीब नूर दीन दी सरां, हुण नूर दीन दी सरां तां आपां कई वारी सुन लिया है ना, ते हुण मैं बेनती करा भी जो वक्त मिलिया ते तरन तारण साहब दे बिल्कुल लागे है, हुण जाके आयो बच्चों नूं दिखा के लेके आयो, जो तुसी इंडिया जांदे हो उत्थे जरूर दिखा के लेके आयो भी इत्थे बोझा सिंह गर्जर सिंह शहीद होए सी, इहो नूर दीन दी सरां है। उत्थे नूर दीन दी सरां दे कोल हालांकि अहमद शाह अब्दाली आया ही है हजे, इनू उथे गुरु के सिखा ने रज के लुटिया, जेड़ा ए लाहौर तो लुट के लैके आया सी ना 30 लाख रुपया, उहदे विचों बहुता लुटिया ते कुछ एक घोड़े कुछ एक हथियार सारा कुछ लुट लुटा के गुरु के सिख, उन्हें नू पता लगे हुणे चंगी नहीं गुजारेगा। वह सिख सन जेड़े ओ कला नौर गुरदासपुर दे इलाके च, गुरदासपुर दे इलाके च कला नौर ते दुआबा उहदे वल भज गए। अहमद शाह अब्दाली उठो फिर तुरिया, यह पहला देख चुका होया सी क्योंकि 1739 विच नाल आया सी नादर शाह अब्दाली दे, यह सारा कुछ हालात वेख चुका होया सी, इन्हूं सिखां दा कुछ ना कुछ पता सी। इथों ही अगे चलदा है, 25 फरवरी नूं इत्थे पहुंचदा है सरहंद विच, सरहंद उदों बड़ा वड्डा शहर हुंदा सी, अज तां उजड़ गया जिथे बच्चे शहीद कीते ने, असल विच उह सरहंद है अज उजड़ गया, फिर उजाड़ दिता सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वेले, वह वखरा बसिया गल वखरी है। इथों फिर दुबारे अहमद शाह अब्दाली चलदा है, यह 11 मार्च नू 1748 विच आके दिल्ली हमला करदा है। दिल्ली जदों आउंदा है ते मोहम्मद शाह रंगीला तां याश सी, उन्हूं ते पता ही कख नहीं, ते ओ जिहड़ा कमरुद्दीन सी उदो नमाज अदा कर रहा सी, जदों इन्हें पहला गोला दागिया, जदों अहमद शाह अब्दाली ने पहला गोला दागिया उदो ओ नमाज पढ़ रहा सी, ते नमाज पढ़दिया उदे ओ गोला लगिया ते ओ मर गया। उदा पुत्र है, हुण इक नां होर बहुत खास आउण लगा, मैं बेनती करा ए अगे सानू इतिहास विच बड़ी बरी दी लोड़ पैनी है, मयून दीन एदा असल विच ना है, पर एदा ना जड़ा मशहूर है हो मशहूर है मीर मन्नू, एहो पापी है जड़ा सिख इस्त्रियां दे छाती उत्ते सभा सभा मन दा पत्थर रखदा सी, एहो पापी है जिन्हें अपनी उस कचहरी दे विच, जिन्हें अपनी जेल दे विच बीबियां नू खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा करन ते मजबूर कीता, ते चक्कियां पिहौंदा सी, ते नाल ए ओयो पापी है मीर मन्नू जिहदे वेले सिख बीबियां सिख बच्चियां अपने गलां विच अपने पुत्तरां दे टोटे करवा के हार पाउंदियां सन, ए ओयो है मीर मन्नू। हुण इहदा इतिहास नाल संबंध जुड़न लगा है, कमरुद्दीन दा पुत्तर है, कमरुद्दीन मोहम्मद शाह रंगीले दा उच्च पदवी दा करिंदा है नौकर है। मीर मन्नू ने एक चाल खेडी, उन्हूं पता लग गया भी मेरा पिता चढ़ाई कर गया मर गया है कमरुद्दीन, उन्हें उन्हूं सरहाने ला के हाथी उत्ते बिठा के सरहाने ला के इस तरह लै आंदा भी जिवें ओ फौज नूं कमांड दे रिहा होवे,

बेनती करे अस दिसंबर के महीने 1764 विच अहमद शाह अबदाली सतवें हमले विच आया है तो सब तो पहला हरिमंदर साहब वाले पासे मुख किया है। उन्हें मन विच भावना यह बार बार बनी हुई सी जितों सिख जिंदगी जान लेंदे ने मैं उन्हें तबाह करा। तो जदों अमृतसर साहब की धरती ते आया उदो श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते जां दरबार साहब की मान मर्यादा की सेवा निभाउण वास्ते उदो केवल 30 सिख सन उत्थे, जिन्हां विचों मुखिया जथेदार गुरबख्श सिंह है। 30,000 की फौज और वह भी अबदाली की, 30,000 की फौज अफगानिया की हरिमंदर साहब न अमृतसर साहब न घेरा पाके 30 बंदिया मिन्नत कर दी है, जोर लाउंदी है, तुहाडे चो एक भी बंदा हथ खड़ा करके आ जाए पर तीहां दे तीहां ने शहादतां तां ले लईआं, अपना आपा ते वार दिता पर एक भी बंदा 30,000 फौज अगे नहीं चुकया। कृपान लेके जंग दे मैदान वांगू बाहर आके लड़े ने सारे दे सारे, ते हिक्का विच अपने गोलियां खादियां ने, फट खादे ने, जख्म खादे ने, पर एक भी अजिहा नहीं जिहड़ा पिछा पैर परत गया होवे। इह ते पता ही सी ना वी 30,000 दे सामने साडी मौत सानू सामने उड़ीक रही है। खैर उदो इतों अफगानी भावे अपनी जित समझदा सी, एक गल मैं होर बेनती करा, इह सतवां हमला ना इहदे नाल इक होर गल बड़ी सांझी है, उह सांझी है सतवें हमले दे वेले काजी नूर मुहम्मद इह नाल आउंदा है। इह काजी नूर मुहम्मद इस अहमद शाह अबदाली दे नाल ही आया सी, इहदा कम करदा सी, इहदे कोल करीबदार सी, इहनूं इतिहास दा शौक सी, इहनूं फिर एक किताब लिखी है जंगनामा, उहदे विच बड़ियां अलग चीजां लिखियां ने। है तां अफगानी सी, ईरखा नाल भरिया पिया सी, अंदरों सिखां दे प्रति बड़ी नफरत करदा। जथेदार सरदार चढ़त सिंह शुकर चक्कीए नूं ਇਹ ਚੜਤੂ ਲਿਖਦਾ, ਇਤਨਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਲਿਖਦਾ। ਸੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਤੇ, ਖਿਮਕ ਰੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹੀ ਬਣਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਹ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਈਰਖਾ ਬਸ ਆ ਕੇ इन्हें इस हमले तो बाद सारा अगे इतिहास काफी सारा लिखे है, पर उत्थे एक गल कहिंदा है, कहन लग्या भावे मैं ईरखा वस होके इन्हां नूं कुत्ते कहना है, पर खिमा करियो जे इह कुत्ते कहाउण दे हकदार नहीं है। कहन लगे इन्हां दे नां गुरु ने रखिया सिंह, सिंह दा अर्थ है शेर, वाकई शेरां वांगू ने, ते शेरां वांगू ही जिंदगी गुजारदे ने, इन्हां विच कोई अंतर नहीं है। तो अपने अफगानिया नूं मुखातब होके एक गल कहिंदा, कहिण लग्गिया भलियो जे तुसीं तलवार चलाउणी सिखनी है तां इन्हां सिखां कोलों सिखियो, जे हमला करना सिखना है तां इन्हां सिखां कोलों सिखियो, इन्हां दा हमला दुनिया तों वक्खरे ढंग दा है। इक पल मैं तुहाडा होर ख्याल दुआवां, सिखां ने जंग करन दा इक ढंग सी बड़ा निराला, उहदा कारण सी वी विचारे कोल फौज तां थोड़ी जी हुंदी सी, हुण देखो उहनां कोल तां जरनैल ने ना, जिहड़ा अहमद शाह अबदाली दा बड़ा वफादार जरनैल आ जहान खान, ते बड़ा लंबा समां मगरों मरदा, ते बहुत ट्रेंड बंदा सी, बहुत दूर अंदेश बंदा सी, पर सिखां दे कोल तां इहो जिहा जरनैल जिहड़ा सिखा सके हथियार विद्या इक भी नहीं सी, बल्कि सिखां दे कट कड़ी चीजां दा हुंदा सी, जिनकी जात वर्ण कुल बाही, सरदारी ना भई कदाही, तिन ही को सरदार बनाऊं, तवे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, दुश्मन से कैसे लड़ पाएं।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ

तो अन्ना हो जाएगा या कोले नाश हो जाएगी इत्यादि। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उत्ते फोलिया अंगीठा तो कुछ होया कि करे जी गुरु नी हमेशा चेता रखो सतगुर सदीप काल सतगुर सबना का भला मनाएगा। सतगुरु कदे किसी का बुरा नहीं मना। दस पिछे भी थोड़े न एक बचन साझा करके गया सी पिछले समय च असी कई मिठाई सियां बना दित्तियां। गुरु तेग बहादुर साहब जी के बारे च एक साखी आउंदी मैं निक्का जी गल करके अगे तुरना चाहना है। पर एक पिंड विच गए तो उन्होंने जाके दही मंगिया तो वह कहन लगे भी बाबा जी दही तो साडे है नहीं। साहब कहन लगे है तो है करे। वह कहन लगे भी नहीं है साडे बच्चे लोगा। साहब कहन लगे भी चंगा भाई अज तो बाद साडे पिंड विच तुसीं दही जमा के देखो किसी के घर दही नहीं जमेगा। मैं हैरान हुंदा इस साखियां नाल भई एक बंदे नूं की पता भी बेचारा कौन है। गुरु तेग बहादुर साहब जी शख्सियत बारे नहीं जाणू होएगा तो नहीं जाणू। उन्हें नहीं दही दिता उन्हें अपने बच्चे प्यारे लगे एक फकीर नालों बच्चे प्यारे लगे तो उन्हें अपने बच्चों ने दही रख लिया भी मैं तेनू नहीं दिना मैं अपने बच्चों देंगा। कोई बड़ी अजीब गल नहीं सी। एक बंदे ने दही नहीं दिता तो सारे पिंड सजा मिल गई भी थोड़े पिंड दही नहीं जमना। मेरे कहने तो मुराद अज सिख लोड है। सिख योजना गल्ला करता चंगा नहीं लगता। तू तो अपने गुरु के इतिहास में दागी ना कर। उन्होंने कलम तो जो लिखना से लिख दिता। मैं एक छोटा जा दृष्टांत होर दिया जिमें तुहाडे नाल इन्हां दिनां च दस बेनती करदा रहा है। काजी नूर मुहम्मद दा जंगनामा जां जादू नाथ सरकार यह अत्यंत गुरु घर का दुखी होया। इहदे गुरु तेग बहादुर साहब जी शहादत बारे लिखिया सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्ते कोठे उत्ते चढ़ के केस हरे कर रहे सन केस सुका रहे सन। अचानक औरंगजेब ने देखा भी मेरी धी वल और गुरु तेग बहादुर साहब जी मेरी अखना देख रहे ने। उन्होंने इस गल तो ईरख करके उन्होंने शहीद करवा दिता तो कोई शहादत नहीं सी। ए जादूनाथ सरकार दे लिखे बोल ने। मैं सिर्फ इसलिए तुहाडे नाल सांझे कीते हैं पर जे उन्होंने ही नहीं लिखे ने सिख का फर्ज तो नहीं ना बनता भी अपने गुरु की महान वडियाई नूं छोटा करिए। देखो एक आसा की बार की पंक्ति आउंदी बड़ी प्यारी सतगुर वड्डा करसा लाही है जिस विच वड्डियां वडियाईयां सतगुरु नूं वड्डा करके सलाह सतगुरु नूं छोटा करके ना सलाह। उसे गल वल चलना चाहना। ठीक है महाराज रणजीत सिंह ने सेवा की पर ऐसा नहीं सी। एदी निडरता दे कारण एदी जिंदगी दी शख्सियत उची होने दे कारण इथों तक अजीजुद्दीन एदा एक फकीर सी अजीजुद्दीन उहदे दरबार च बड़ा सत्कारिया प्यारिया होया सी। शिमले विच एक बारी संधि हुई शिमले च मीटिंग हुई ए अजीजुद्दीन शिमले दी मीटिंग विच गोरियां दे नाल शामिल होने वास्ते गया। गोरियां एक सवाल कर दिता कहन लगे भी सुनिया तेरा महाराजा एक अख तो काणा है ते चेहरे दा बड़ा करूप है तू सानू दस असी बड़ी बारी सुनिया। उन्हें अजीजुद्दीन एक बचन आख्या सी कहन लगे भलियो भई इस गल दा तुहानू पता हो सकदा मैनू नहीं। उन्हें पूछा भी तेनू क्यों नहीं तू दरबार च रहना। उन्हें आख्या महाराजा रणजीत सिंह की शख्सियत ही एडी मैं अज तक कदे ऊंचा मुंह चुके उन्हें चेहरे वाली नहीं देख सकिया ते मैं चेहरे वाली देखिया मैं भी सुन रही हां भी कख तो कहना पर मैनू पता कोई नहीं है। जेड़े लोग उहदे ते प्रभावित सन वह इतने ज्यादा प्रभावित सन। अच्छा प्रशासन काल उन्हें चलाया। याद रखने योग बात है 1738 अधरंग हो गया। कुछ एक दरबार उन्हें अपनी बेहोशी की हालत ही हिलाए ने बेहोशी जही की हालत में लाए ने पर उदो मुड़के कामयाब नहीं हो सकिया। तो उन्हां ही दिनों के अचानक उन्हां ही दिनों के इस महाराजा रणजीत सिंह ने 1839 जीवन का अंतरा साह लेंदा है ते उदो इन्हें बड़ी कोशिश की सी भी किसे तरीके मैं इस पंजाबियां दे राज नूं खालसे दे राज नूं दरबारे खालसा कहा करदे सन। अपने वल्लों ने कदे अपना राज नहीं सी कहा। कुछ एक ऊणताइयां भी ने यह अज आपां नहीं फोलणियां कुछ एक ऊणताइयां भी ने इस गल च कोई दो रामा नहीं। महाराजा रणजीत सिंह दे पक्ष दोवें विचारन वाले ने कदे वक्त मिलिया मैं जदों अगली लड़ी च तुहाडे नाल सांझ पावांगा कदे। पर इस वक्त उन्हें जिन्नियां घुमल्लां मारियां महाराजा रणजीत सिंह दा राज ओह होया जिहदे विचों 40 सालां दा राज है। मान लो 40 सालां दा राज है वैसे 1801 विच बैठदा है